ताइवंग जीव एखोइना करीबु खंगब गमलुगनी पुमनमक हरे कृष्ण गोविंदा नंगी लीलानी अमम अंगान खायरीबा सक उदबा मपु इवुंगो लमजिंग लमताक पियु नचा सिंगबु सेनवियु मिकुफ खुदिंग शोंजरी अवाब पुंबा कोकनवा ईश्वर इवुंगो नहाकिन तिक नगुंतबु जगत की मबुंगो श्री कृष्णा।

0: ningombom Jawaharlal ne khongwa basi tavire Akashvani Imphal hauzik ayuk kipung ne phantare Delhi dagi rileda samachar prabhat morning news amadi Silong dagi rileda northeast news mathang mathang oina mikup khara ki manungda taba phongbiragani
1: सुनिए क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं तो बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर
3: हर घर सूर्य घर
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी

0: बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

0: 26, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952

फिल्मिसैगी खुदोल्दा अनि शुभ होइना खुदोल टमजरी पुन्सिसिदा नङनतना फिल्मदगी बर्लिनगी खोन्जेल्दा एम सेलिना सेरेङबा हामुम नवना सैराङ विषयमा

ताविरे कोंखाम अमुमचा सिंह ने शक्वा मतमिशे अनि मथंग मथंग गोइना मतमिशे की खुदोल द अहम शुभ ओइना फंजोबम श्यामा देवी ने शक्वा दोनेसोर कुंज ओक्रम ना सैरेंगबा ओइबियु नंगना पुंसी की इचेल हैना से हुरीबा हिशेसी खुदोल तमजरी।

0: ꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI
0: कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी इम्फाल हजिक अयुकी पुंग 13:09 चले दिल्ली दिगी रुलेदा वर्ल्ड न्यूज ताब फोंग विरगनी।

बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। और दोस्तों इसी के साथ अब बातों को देते हैं एक छोटा सा थोड़ा सा ब्रेक और सुनते हैं खूबसूरत गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है होली चौक उत्तम नगर से। जी हाँ, जयराम खोरवाल साहब, सचिन, अमन, दीपांशु, इन्होंने भेजी है ये फरमाइश रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत गीत। चलिए सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

90 साल का सफर, 90 साल की शान, आकाशवाणी रहा सदा भारत की पहचान। जी हाँ, हर कोने तक पहुंचाया जिसने ज्ञान और प्यार, उस अमर आवाज को हमारा शत शत नमस्कार। ये मैसेज भेजा है राजेंद्र जटोलिया जी ने उषा चारू के साथ, दिल्ली नागलोई से लिख रहे हैं ये मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह रही हूँ इन्हें इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब दूसरे मैसेजेस का भी हम रुख कर लेते हैं जो लगातार आप भेज रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे अपनी तारीफ सुनने का और उसे पढ़ने का शौक है, लेकिन आप इतने प्यार से लिखकर भेजते हैं कि मेरा दिल नहीं मानता, और इतनी मेहनत आप करते हैं लिखने पर तो उसे पढ़ना तो बनता ही है ना। तो लिखते हैं कि नाज वो नाज है, हमें भी नाज है उसकी आवाज पर, जैसे कोई मीठा सा नगमा बजता हो साज पर, जब वो बोलते हैं तो थम जाती हैं धड़कनें, पल भर को खुदा की रहमत बरसती है उनकी इस आवाज पर, उनकी बातों में घुली है मिश्री और वफा का नूर, उदासी के बादलों को चुकर देती है पल में दूर। वो लफ्ज नहीं दिल को छूने वाला एक एहसास है, उनकी सादगी पर जमाने का हर दिल है मजबूर, सलामत रहे उनकी ये महफिल और ये हसीन अंदाज, जिस पर झुकता है अदब से आज सारा श्रोता समाज। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैसेज आया है बबलेश पवार जी की ओर से, डैनी पवार और मनीष पवार इनके साथ शामिल हैं, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आया है ये मैसेज। इनके साथ ही रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी इनके साथ जुड़े हैं खलीफों की बावड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, इसमें भी लिखी है बड़ी अच्छी बात कि शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो जमीर को जिंदा रखना, आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स जानते हैं, दो शख्स को पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा, और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही

हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है जी। सतीश अनेजा बिमला अनेजा के साथ लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी, जिसे हम पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आशा जी की आवाज में है। तो चलिए सुनते हैं और फिर जल्दी से वापस लौट कर भी आ जाते हैं।

0: 망고온 지다 능능 남느나 뭐 박비덕 로파 정화비 모두 자트 하르가 리싱남에 세태기 변나 트로 응시디 숙야야 이가로 응시디
1: 안테디 라야 되나 뭐 박비덕 좀 검동게 망농아이 더브로 에코이 따시 우람더브라마
0: 망담게 이 망담게 솜 까시다 솜더 퍼제나 펌제 테블 마사시다 노이기 포체 야 아디도 타무야니 저오 저오
2: 야니
0: 저오 에마 에이키리로 근데 너희 높이네 원이 너희 니 소리 듣디 아니 돈들이 끼왜 말아이미 저거 저거 저거 저거
1: 다모기 가시디 양 파제나
0: 에라 해다 해결이 너무 좋아
1: 다모디 오피스 게 타바 엄마 수도 회타이 아두가 티카 수도 회네타이 신 크라바노 파마나 나하중아 시슈 욤달레라 바세 아이디 ngaihe
0: eskeru noi jam thuna khangye he ofis tuma kya chatte tolo pangam da de sumchat pe wani soi pulap tawruni tikas oi gi marup mamana yam chen bi banida
2: ta mogi punsi sidi yam nongai ba punsi eduni ne
0: du oi amarum da nongai ya gedra amarum de di yam wai da
1: kari gi no ta ma
0: ha kanuni ai bu nu sibi ba masak phajaba amtang sum pam sim sum wa tan le ra ba ka ani wa le de ne ko chi wa pna to
1: ai ko yi ta me so bi sibu phajadra bo
0: ha phajaba bu di phajai ne du bu phajaba ai du na mani ai bu nu sibi ba yana bai buduna amani dana sa ha
1: he mang tamo
0: koi ta mang tamra ba mang tamge mo pak pidak tu hip pc nungdang ahum sure ahin aniyame di amung samu na tale ko mo pak pidak tu hip pidak ni wai je ahin amana karune lan tau re nong tong skujin chen lo cha re petta ki bo bang be aeroplane na boom da da dorim ne nong ding ni nang na parak po aina kiram ma jaina kiram ma je ai hero bu nam ai do or da bo hit ning ra ba boom cha ho ba dalam ma muk sha hum da da ri ne adu mi rang da palle to bi boom da adu mi rang do khara ga sum te pa ro khara ga sum te pa ro aina ki dram tang la ma jaina la la mang ne ni ka to re dina adu di a kon be hum ni ju ge hum bu ma di pa cha ra ba lai ko na ma dai ji miam chou bing ai ri ne na nong pha na mo da pham ma ge chile le yi ga si pha ja pha ja ma nong wa nong si ra ba ka ya ma ina ta ga sa la dra ba le yi ga do
1: ha le gi ma ga ni tu ga di khene re ne
0: khene re khene re ai ni miam chou bi sing ai ba sing ai ba sing ai ba si la te la te
2: ai ai la ke to ni ba ta mo na ngai ra ma ni si khang ge ba tu da baba do ma sa ngam mak ta ba che ba ta le
0: अबे इन खाली नहीं मंग दो को नशी लागे उन्हें लगे तुम द काम दो शरुक पुदी नशी उन्हें लगे तुम द ठुंग ने बने फरे ने खाले के चल लगे ने ना फुको होने का आंदे दी आशा मंग मुझे लापू वाले सही तो मंग दो
1: सर पति की नहीं है एक हाइज़ लग
0: अरे तो मंग आशा है नहीं को इसे आशा ने उन्हें हर बता मौ कहीं तो वार नो मैं सो भी दो यानिंग अब नहीं गाय में तो हर वही वाली ने इस ये मैं सो भी मामा मामा एक गांग इसे ये मामा मैं सो भी मंग ने ऐ किसे मंग ने को ता ता है बगैर नती है नहीं ना मंग हंग बुद्ध रुसुम चुम भाई ने बना मैं तो गांव में नो बा
1: ตามมุกินงดอพอระบะนี่กะริกิอะอุดายุนะกะริกินงมังดะพะยะมังดะอุนะบะซิไตบังดะเนไกเนนะไฮเนเยมะซิบิซิไฮคโปนิตามอนะซีติเนอิชอยชอยดะบะดะซะฮิมังาพาวะซิซินนะบะยะบะโปไซดังละฮูโรกะริกินะฮะจาเมมซอวินะซิดะลากะซิซินนะนะบะ
0: ใช่มังอาป่าวกินมนุงเดเมซอวิสมัยลักษณ์นี่อะดุดะลักษณ์ตะดีอะตุปะมะกูเฮยงกินโตมอตะไรดิเจฮิมังอะเนอะซาไอดิเนนิมิตมังอะตังไอผะดะกะนงายระบะทามังอะตะมออะเซเซฮิมังอะเบริดอวยบะซิดิยานิดะนะฮะอะอัยอาร์ทะซีนังบับตาดะบะมาลีอะซาตะมอกะซากะซิดิวายเฮกุนนังโนวะฮัลลิบะนะตรอ

ता खिदब कुइरे इसाबी नहाक की खोंजेल उ खिदब सु कुइरकले नहाक की नुसी चेंगलो काइना मैना चकलकले थमोइसे नहाक न चटकी बमाइके येंगने येंगना लेहौरी एदी थमोइ काइना ततन निंग सिंगी नहाकपु मिकुप कुदिंग

द साउथ एसियन फर ह्युमन राइट्स की को चेयरपर्सन डॉक्टर रोशमी गोस्वामी ने ब्रेन स्ट्रोमिंग ऑन ह्युमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इथनिक रिलेशन समी ग्रास रूट फेमिनिज्म लेक्चर पीगनी। नेशनल पीपल्स पार्टी एन पी पी की लुचिंग जेम्स पी के संगमा मेघालय की अमतब राज्य सभा की सदस्य होरगनी। राज्य सभा मिखल की तमक नरांग स्क्रूटिनी लोब फाउदमक मेयचे पीसी। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरियट पांधोब स्क्रूटिनी अदुदा सरकार पाइरिबा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की अमतब मिरेप जेम्स संगमा की मिरेपचे की स्क्रूटिनी याकीबनी। अतोप मिरेपचे मिरेपचे पीसीलक्तबदगी माक लंबा यावदना काकीबनी। अमरुमदा अरुणाचल प्रदेश की सीट अमगी राज्य सभा मिखल की तमक स्क्रूटिनी नरांग पांधोखरे। बीजेपी की मिरेप ताइट तगाकना पीसीलकीब मिरेपचे अनिमक याखरे। मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा नरांग अहानब बेट्स की ओना इलेक्ट्रिक बस सिंह लमथाखरे। शिलोंग पांधोब थोरम बस सिंह अदु पी एम ई बस सेवा स्कीम की मखादा निंथीजना एयर कंडीशन याव बस सिंह अदु लमथाखिबनी। थोरम तुदा वा गंगबद मुख्यमंत्री नहाय ई बस सिंह अछि सिजिनातुना मेघालय की लंबीद थोकलिब ट्राफिक की समस्या अछि खर मखैदी कोखनब गमलगनी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिंह अमुक हना जीरो टैक्स पॉलिसी सना हनब थबक सिंह पैखली। लोनना मंत्री अमदि सरकार की मकुक थोंब ऑफिसियल सिंगजु इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सो अथुब मतमद सिजिनानब थौरंग पैखले। माखना मखा तनहाय मेघालय सरकार ना ई बस यांखै अमजु अथुब मतमद चेलहलकनी। केंद्र की इंफॉर्मेशन सुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने सेम की इंटरमीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी नगाले ना कुमजार इसिंगनी कुंतरेट की मिकोक थिबगी मतांग दा मीडिया आउटरेस की खननेनब थौरम अमा गरांग पंगथोकरे। मिफम तुद वांगंगद सेंसस ऑपरेशन की डायरेक्टर नहाय सेल्फ इनुमरेशन की खुदोंचाब असि जून 16 तगी कुंथ्रा फाव सीसन की ऑफिशियल पोर्टल द फंगनी। मसी की मतुंग तारकपद युमकोक थिबगी थबक जुलाई अमतगी कुंथ्रा फाव जथगनी। माक नहाय तौरांग असि की तमक इनुमरेटर अमसुंग सुपरवाइजर लिसिंग 600 हेना सिजिनरी। नगालैंड हिदाक मना हिदाक मना की पोथोक सिंग याव चिंजाक सिंग सही चिंगना पाखली थौरांग अदु मपुंग फाना चाकोथनब नगालैंड की हक्सेल अमसुंग याइफै युम्बाल मंत्री पाइवांग कोन्याक नहाइदि। थौसिल असिना नहा सिंग अमदि मियाम की हक्सेल की फिबम फगथनबदा मतेंग पांगनगनी। अथिंग बसी थमदब होनबदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चर्च अमदि तोंगा तोंगानब फुरुप सिंग की लुसिंग बसिंग मदि लैनब डिस्ट्रिक्ट अमदि पुलिस का पुन्न खुसमनतुना चटमिनगनी। पनब याई था से हरपद नगालैंड सरकार निकोटिन याव पोलम साब पैसीदुन थम्ब पुटो पुचिन तौबद योनबद अचिब थमकीबनी। तबीब पासी आकाशवाणी इम्फाली। लेबाग की खुगंग चाखोधनब लुप कोटी लाख लिंग कुमी थौरंग केंद्र सरकार ने हूदे। केंद्र की टूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान नहाय सरकार ने एम जी एन आर ई जी ए की मखाद लुप कोटी लिंग कुंथ्रा कैथोखे। माक नहाय सेंथंग राज्य यूनियन टेरीटोरी इंटरीम एलोकेशन होना लुप कोटी लिंग मरफू तरह मंगा चाटू मरफू तरह नितो कैथोखे। हजी फाउद कैथोब सेंफमें लुप कोटी लाख लिंग कुमार सूरे। वफम से श्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी राम जी मपुंग चनहनबंग स्टेट रूरल डेवलपमेंट मंत्री सिंह वर्चुअल पांधोब मिफम फोंदोखिबनी। एक इबाग सिंब थूबद मथंग थागी चनब हौरगनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस स्लोवाकिया की तरुकनी खोचट थाजनगी हौरगनी। माँ की खोचट की अहम सरुक नुमाइजुट फ्रांस की राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन का लेबाकनी वफम क्या खनगनी। लुचिब भारत इनोवेट होदोगनी। माँ की अनीसुब खोचट थाजी तराम तरह तरुक स्लोवा रिपब्लिक तुमगनी। भारत निखा तमलब कमजा लिंग चमापन मरफू तरहद भारत की प्रधानमंत्री स्लोवाकिया चेटब श्री मोदी ने अहमनी। ममांग सही की एप्रिल था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया चटकी। श्री मोदी ने स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का अनुब लम सिंह तेंबंग पीनब वफम क्या खनगनी। अवा नुप की राज्य खरद लाब निनी मैपद कन्न नौ चुरब।
ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯕꯥꯛ ꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯑꯁꯥꯝ, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌ, ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡꯆꯨꯒꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤ, ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ, ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔ, ꯄꯟꯖꯥꯕ, ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯂꯗꯥꯈ, ꯖꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ, ꯎꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯪꯒꯦꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯑꯀꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯆꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯏꯂꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯜꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯦꯡꯛ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ, ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 53 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯃꯥꯜ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 40 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯂꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 140,000,000,000 ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯆꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों न बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक

0: समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती हैं।
1: जी,
0: फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी,
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को जेवेना कहते हैं।
1: जी,
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-5559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों

0: तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे,
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: हाँ, अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
2: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।

0: अच्छा,
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा,
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
2: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: एनसीईआरटी की तिंगबांगलो ने संदोक जब थौरम उमंग ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोक चरी मणिपुरी फिल्म मिशई कलक एक न मैरी न लांगोई चलबी मिपाई रबी सची घुम तथक न रबी चिंगन बथा दोगलो नुंगी माइके फांगलसी लागलो ताबिरसी ng iko nang se film dagi nongmai tem pahari madi bilashini ani puna sakmina ba bizente kumar sir mena sairing ba nongmai tem pahari na

श्री गुरु प्रणाली का लई तुलसी की सेवा अब तंबीर रिबा जीव गरे पर संबंध मरी थम के बजी श्री कृष्ण की चुरु बंदे की हेन में लई ती कोई दिन कृष्ण सेवा तंबीर हरि हरे के बता गुरुदेव आदई ते प्रभु की चुरु बंदे सुखुरुम जाई श्रीवास गदाधर नसिंह रबा ब्रज की सखा सखी पुण्य मन मपूल हर गौरांग महाप्रभु की लाभ थौगुंजर रिबा गौर भक्त पुण्य मपू अम दंगोइन भक्ति कचई।

बाजा खरा शीना नाम संकीर्तन हो जा रखपदा इष्ट देवदा भक्त पुनमक्ता वैष्णवा वैष्णवी नाम मुताबिरीबा कुंदवासी की पाददा हाइज चंगे खुरुम जबनी सीधे मांगू जरक पसीदी मथंग सिंह ताबीरईबा श्री श्री चैतन्य चरिता अमृता मैधी लागी तरागनी थोई शुभा परिशेद जोशिल सीधा इबुंगो ने जगन्नाथ की रथ जत्रा कांग नंगन बनिया इबुंगो सुंदरा सुंदर लई हरबा गुंदिचा मंदिर दो भक्त मया मुने रे हरग छिंगतोंग चाम थोक दौरी मधुगी मांगू न बर सदो ngasi gi sankirtan si da nanai ani ne sakje sonjara ge sarada ha tha jaban mangoi na bi re ga ai bungoi nam ni goi de na nung shi na ta bi ge da bo

0: ब्रजवासी की वखन पुक्षी न तेने दी ऐ मुई कृषि की चोरों भंग का मुई कोई देना ब्रज की वखन पुक्षी लु घर देने बुगो मी चाम ने सुग दब थबुक तो इबुगो मरो न होने दी ते छो ना थप जु दा इबुगो श्री हस्ते तो ना छितो ना थोरे इबुगो मी चाम ने सुग दब की मत तो दे वो ये इबुगो तो
1: ब्रजी

0: गोदा उड़ी दो जगन्नाथ नृमा पर निशिन बदा इबुंगो ने सेवा उई गोदा उड़ी बा भक्त मै आम ने महाप्रसाद फंग दो लुहो फम दो मधु शिवंगो शितो पग छिंदो पग चाम थु ये महाप्रभु हुना
1: अनाथ धुइया धुइला सतर
0: भक्त मैया आपने जब
1: प्रांगो
0: उई सागे दो रिबु नत्य मंदी इबुंगो ना जे मांग तुम मनुंग पानी इबुंगो तरुता नाल हल्दी।

0: 哼，这都泉州过来的，我带路在那，咱们土一米青都一米，那到啥啦？青都差不多过来的，我没多个么？领土过来一米，我都搁那一家。哎，我那没那一块地，没养路呢，还那个湖南的一多。如果我们家媳妇，咱们那不真呐，带路在那了，很厉害。
1: मदिरा सतुरा दीक प्रख्या लन
0: मधु मु लो रे हो ले छि ले मसाई गी जगन्नाथ लिंग छिन गदुर मंदिर दु गुनि चा मंदिर दु माई गई मई सिबु म पानी अमु तै थो नान थो तनी बु मधु दु लुहल लक

0: 妈妈读书，那得啥拉书？路好跑，所以我门店里给门老板不能买个西风，我老爷呢还路很里。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Naam Sinu Pumnil Himil.
1: Hey, Parabhuram Charana Juge Dilakhat Jolong.
0: Kuna Ibuho Na Jamna Pumnil Sang Na Ibuho. Chito Chito Inge, Taito Na To Inge.那多不就看工地呢？不是那娃为是的，舒服的不拉磨来耶！一闪闪，叫一碰碰，叫海边的舒服的不拉磨来，不的挖坑度。本来忙呢，哪里不偷懒度？干哪里行不起来度？把那皮球弄得开始弄那大海里，还那个呢，弄那在那上面弄里度，马的乌度都不会的呐。不是压家伙一看路在那马上，一碰一撞弄度的呢，不然不在那巴子在附近行个哟，还在那里弄。
1: 在那路呀呀行，阿婆弄把弄个人。
0: 马路好，路窄窄呐，一碰一撞弄的，还在那路不在那行些，苦着呢，注意还那个呢，还在那哪里走呢？弄不呢？
1: 我那哈的去不拉磨磨呢，都靠着车行了。
0: 在那哪里走路嘞？骑着狗腿的哈的，乌鲁里的马哈不拉夫呢？哈里哈里。哦，伊问我，本领他么的挖着伊，家里给侬挖的，伊问我白得伊白得呢？伊说那个门的人尼过，哎，伊不讲个哪里新个道理尼过，家里侬呢不拉门的为的是不？我说我偷偷你的过。
1: 见好比一股菜打乌嘞，我一牙签成都城。
0: 哦，伊那么伊问我，今年得了啥米？不然那狗屎能摘摘呢？ब्रज गोपी ने तेन कना दे पिधो पले हिदरबा ब्रज की लू हरबा ब्रज गोपी की प्रेम जो तोला तार में कली जी की थमो नु हापरी निंग भी राबो कली जी की थमो लोग ते लईबा मया को भी समु ता ढोकरु ने आइ दनी बुंगो मया ए कार बु समु की मसे वे रहे लिंग भी राबो प्राणो न इपंग पंग जबा मनाय ब्राह्मण मुदी बुंगो थमो नु द पुंग हक ने पिन भी हरे महाप्रभु न

विष्णुत्रितायां जजत्तुमखैद्वापुरपरिचार्ययां कलौतद हरिसङ्कीर्तनम्। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं कलौ नाशिव नाशिव गत्यै न धा भक्तपुरु कृष्णकीनां सुन्व्यु कृष्णकीनां झुनि हरमगिविमो मया इदं गान्धुवैरगा जगोय हौरे कृष्णचैतन्य महा

0: करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार

0: से लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कांगड़ा चैनल, मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम। फौजी भाई, आज बुधवार है और हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा है ये गीत, फिल्म लक बाय चांस से महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल की आवाज़ों में। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

फौजी भाई, अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से। परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में गीतकार है कौसार मुनीर और संगीतकार है सचिन जिगर। ये गीत अनकहे और अनसमझे प्रेम और दोस्ती के बीच के खूबसूरत एहसास को बयां करती है।

फौजभा अभी आपने सुना साहित मलिया की आवाज़ में उड़ता पंजाब फिल्म से ये गीत। गीतकार थे शिव कुमार बटालवी और संगीतकार था अमित त्रिवेदी। फौजभा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल से फिल्म संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं संगीतकार एआर रहमान के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म जोधा अकबर से ये गीत। आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और मधुश्री ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

गुड्डू के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म शादी में ज़रूर आना। इस गीत में आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, गीत लिखे हैं शकील आज़मी ने।

फौजी भाई, अब सुनते हैं फिल्म संगीत के आखिरी पायदान पर प्रीतम के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म राब्ता से ये गीत, निकिता गांधी और अरिजीत सिंह के युगल स्वर में। इस गीत के बोल लिखे हैं इशात कामिल ने।

फौजवा इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आकाशवाणी इंफाल चुचक्रो हंदापुंग एफएम के कोरे माओ चुसुबु सुजुताय जो असुथे क्वेश्चन ही खोली एशिया ये मुनो उफो पेलो जो चोम फ्रॉम चोले रेओ इजुको माओ लरिनो अनोलेशिया आकाशवाणी इंफाल इजुको मशली काइनन प्रॉब्लम मणिपुर ले मरे नगा विलेज गड खनो मे चेको सुनिनो को समय चबदेव क्री तोके खै कुतु मुही जिथु मका चन्यु चेहिनो दु इदुनो फ्राबियोरे तोक्रे खै कुतु ख्रीही दु चक्र हुंदा पद्दे गताचिनो युनाइटेड नागा काउंसिल ए सिक्युरिटी फोर्सेस सोंजुनो फ्राबियोरे कुकिन पी मणिपुर ए कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खुनो तोके गोलो चबदेव ख्रीही सेनापाटी डिस्ट्रिक्ट जी तफो न्यूएनो मेडिकल चेकअप सो गोलो चेहिनो साउ तारी रिवे अना कले पय दनो तोके गोलो नगामय चोरो जि ओके जो हि इचुआ समो बुरिए तोके गोलो को समय फ्रगाबिवनो नागालैंड चीफ मिनिस्टर नि फ्युरियोनो इलो प्रवे अना तोके गोलो नगामय चोरो ख्री दुनोली चिपे गालिक्वा पेगो चो ताही हुआ नागालैंड स्टेट ले मुफु गाली दुनो करके गुलु प्रो ए निकोटिन कोलो कोतोना ख्रु नुको नही माचेसो को खालो गुरु दुनो डिपार्टमेंट खनो अजो अक्वा ओवो हि सोमोलिशिएटो नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर पी पाइवांग कोनियाक नो पेमनी प्रवे इदु हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जी हाई लेवल मीटिंग

फिल्म विषय खुदल की आहत बदता बीरे अयक पर लाइव फिल्म दगी मंदा की नीना शक्पा रिमिता अरिबम ने सहरिंग बा ओकेन अमाक्षम ना सहरांग बा इसे खुदल से के निशु बदल लांथुकचरी तेलंगा ममई फिल्म दगी मीना पोखरेल ने शक्पा नरेंद्र निगोंबन ने सहरिंग बा मदी ओकेन अमाक्षम ना सहरांग बा इसे

ताबी रे नंतन हेली फिल्म दगी पुष्परानी न सकपा जी कविता न सैरंग ब ओकेन अमाक्षम न सैरंग ब इसे खुदोलसी की अरुइबदा लेजरे नंतन हेली फिल्म असी मक्त दगी मीना पौखरेल अमदी रणबीर थौना अनिपुन सबमिनबा नरेंद्र निगोंब न सैरंग ब मदी ओकेन अमाक्षम न सैरंग ब इसे

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मणिपुर सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स ना स्टेट अवार्ड लिसिंगनी कुंतरु कुंतरे की दमक थवाई यावा हैंडलूम वीवर्स अमदी हैंडीक्राफ्ट आर्टिसान सिंह देगी दरखास्त कौड़ी। एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स की प्रोजेक्ट ऑफिसर की ऑफिस नत्रगा विभाग असी की वेबसाइट www.dhtmanipur.com नत्रगा www.dhtmanipur.mn.gov इंदिगी डाउनलोड तो यागनी। वीवर अमदी आर्टिसान सिंह ना मेंशन लेबर फॉर्म डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स ऑफिसर सिंह द पिसिल यागनी। मेंशन लेबर फॉर्म चही असी की जून कुंट्रा फाव द पिसिल नबा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की डायरेक्टर एलांगबम जितिया ने थोप चेरोल अमना खंगल लगली।
4: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांग की पुंग तरेत मखाई तारे मणिपुरी द पाओ तबिरसी।

0: वाह हूँ पुरक्त बजाते थेम नऊ दिन पुर उमा सिंह
1: आई क्या
0: फूब चाइबा मत तौग
1: आई क्या
2: सलो उमा सिंह
0: गोपी पंडित
2: आई क्या
0: थोक लिवा थोदोक असिबो
2: आई क्या ननाई उमा सिंह नो
0: ओई असिगुम बबु तौ सिंह नबा हों नबरा
2: आई क्या
0: गोपी चंद्र अंगांग ओलोई दबगी मरम लेते
2: कनागी मसा मसु ओई गबा मामा मपा अनिमक लेत्रबो
0: ओ कनागुम बसिंग नईबो
2: ऐग्यागी मायोक तदी लाइव हाउले ते नाइग्या मतिक सुनते ऐग्या हाउले बिदो योरक लगा वारोल पुन्न म खंग लगने ऐग्या
0: हाँ अदू तो तारे तने गोपी पंडित
2: ऐग्या हाय ने रिंग इसी दा ननाय उमा सिंह कोई दी यो योरक लमाली ने
0: हाँ
2: ननाय हाउले बिदो दुबु ओ ननाय हाउले बिदो सु याउ दी योरक लमाने ऐग्या
1: ऐग्या
0: उमा सिंह
1: ऐग्या इमा लेसन बिरो
3: इनिंग तो
0: इमा करी मत तपाखत पीगन ऐन इमा दगी मरम ममख खंगजनिंग दुना तौबन
3: इनिंग तो
0: इमा दी खंगफम तो असेंग बदु तखुंबी कनागी मच्चानो कनागी मसु
3: इनिंग तो
0: कदाई दगी अंगंग ममख इमा ने तीगी चाक इजबिरी
3: इनिंथौ इबुंगो अकनब सनाया थंगदो ताजबद ननाइन करम नबो पौखुम लसिगे इनिंथौ
0: इमा
3: हिंदबदी यादबनिना अपिकप अंगांग अनियदो पामता पूरग उरुमदा थमलग पांगल शोलबी आइना इखुत्तयोर पायरगा पाम याले
0: इमा
3: इशोना अना अयेक ती बीबी इसानिसु पुंकक चाउर ममा आईगी अवाब मतवदो उबदा इसानिना आई
0: इमा
3: इमा आईकोयनिसु इमागी न तेंग ओइना आयुक अंगनब मतम्द पाम यालुगे इमान पाम द साग पुबिरा हाय आईगी मित्तगी पी तारखे नोमदी इनिंग था आई न इसानी दो साग लामा मगनी हाय दुना नुमित नवातोन उतोलोम लब मत्तम मधुदा इसागी नागद यौना नबलागपन इखंग खंग हाउ दना इखंग खंग हौदना अंगांग म थोरकतुना इमा इमा हाइन कौरग आइगि इमा सिदा मखुतिंग थोकतुना थ मचिन मचादुना कबली कबली इमा आइसे चादबन पोक्षे यांगत नबले आइबुन चागुम न चाग खरदी पिजबिरम
0: इमा
3: मतमदुदा मतम मदुद ननाई आईना इबुंगो नहाकती मैते आईना सिंगता तोंगपा हाउनोपे साकी वाती हाय कनो
0: इमा इमा की वारी यदो मखाता दो
3: ननाई आईना थाई दोग तुन सत के तौब मतम ननाई आईगी फिजी असे पाई रगा कप लगा इमा ऐदि तौबिमल खंगदब मी नत्ते इमान ऐबु साक पिजदुना अवाब से कोखन बिबगी लमंदो नोंग मदि ऐन सोइदन सिंग
0: ऐ
3: मागी वाहय दुदा पुंगाउ गाउ कि इमा इमागी छमदगी चाक यो ममदि पियो ऐबो ऐबो कोलगा खाम कि मतवदुदा आई खोंग थांग बंगम रदुना राजदंदी फंगला बसु फंगलगे खंदुना साग्यो मम पीरे अंगांगदो इसादगी सुहेन सरुक चाम हेन नुम सिरे रिंग
0: कनागी मच्चा कदाई दगी ओईरी का
3: नोंजु नुंशा कया खांगदुना मरुक की प्रेम न पुंदुना मफम मसीद लेरक